0: मुख्तार जी कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतर जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।

0: है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ू। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनवालो आज बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है 17 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनवालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनवालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनवालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 03-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए आप मेल कर सकते हैं। उसी वेबसाइट के जरिए हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं और उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन के जरिए ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन के आवास में सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS की जरिए पेश की गई हरिहरन के आवास में सुबह सुबह लो शिव का नाम भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है और हमारी बहुत सी सुनने वालों को पसंद है हर सुबह ये सुंदर भजन जो पेश किया जा रहा है सुबह सुबह लो शिव का नाम। 7:10 वेटेड हो चुका है। आज बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, 17 सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी सुनने वालों जो देश विदेश में ऑनलाइन देश के बाहर हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, आप सभी सुनने वालों को भी स्वागत किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं एल्बम का नाम हर हर महादेव, उसी एल्बम में से ये सुंदर भजन।

एल्बम का नाम उसी एल्बम में से चांद कुमार के आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। हमारी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं, सभी को वेलकम। खासतौर पर अलगमार में कमला भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं, भजन यात्रा का प्रोग्राम सुबह जाकर रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। और खासतौर पर यूत्रेख शहर की रहने वाली माला बाबूलाल भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को अनहेल खुद मूर्ख और बहुत सी सुनने वालों बस ऐप किया है, सभी को वेलकम। राजन गिरधारी भाई, मिक्का सुखू, रशीद पीड़ू रोटरडाम शहर से, विनोद और खासो पर हिस्ला यंकी जैन डाउचलैंड से, और खासो पर इंडिया भारत देश नोएडा से अनुरेश, सभी को वेलकम कहा जा रहा है। सभी जो ऐप कर रहे हैं, काफी ऐप अंदर आया है और सुनने वालों खबर किया है कि ये प्रोग्राम सुनते हैं, काफी सुनने वालों ऐप किया है, गुड मॉर्निंग कहा है, बस इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी अनुराधा पोटवल जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन अभी आपने सुना प्रोग्राम में जो पेश किए गए। एक सुनने वालों है जो ये खास सुंदर भजन सुनना चाहते हैं, पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में। पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में और भजन का बोल है, बड़े प्यार से मिलना सबसे है।

नंदनी शरण जी की आवाज में सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए 9 मिनट व्यतीत हो चुका है सुबह 7:30 प्रोग्राम भजन रेडियो SBS की जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आज भी फिर बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है 17 सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है हर एक को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और आपको हम ले चलते हैं सुंदर सा शिव जी का भजन की ओर। एल्बम का नाम भक्ति ज्ञान, उसी एल्बम में से निकाल कर ये सुंदर भजन गुरमी

यात्रा में आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए आज की भजन यात्रा प्रोग्राम में एक भजन पेश होगा जगदीत सिंह एंड चित्रा सिंह के आवाज में। तो चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं और इस भजन के बाद आरती भजन पेश किया जाएगी।

सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए आसरो मीठे ये सुंदर भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए। चलिए यहाँ से ये प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं और सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है। साधना सरगम की आवाज़ में सुंदर सा शिव जी के आरती आप सुनेंगे।

क्या करे। उसी फिल्म का ये गाना पेश की गई असरोमी देखवन। गाना सुनकर और काफी पसंद किया है आज सुबह की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। Donderdag 17 september, यानी कि बृहस्पतिवार 17 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आज का मौसम भी बदली बदली सा मौसम, बादल छाया हुआ मौसम होगा और मेरा टेम्परेचर तकरीबन 19 डिग्री से नीचे 3 ग्रेड सेल्सियस। कहीं कहीं बारिश का मौसम होगा, फिर भी आप सभी सुनने वालों को खूबसूरत और सुहाना दिन पेश किया जा रहा है। बच्चों भी तैयारियां कर रहे हैं स्कूल की ओर, पाठशाला की ओर जाने के लिए। काफी सुनने वालों है जो इस वक्त नौकरी पर है या सफर कर रहे हैं नौकरी काम की ओर, शुभ दिन आप सभी को बस पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार बीन, रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। सुबह के प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं कुछ खूबसूरत नखमे की ओर। कुमार सानू एन साधना सरगम फिल्म का नाम हमेशा, और गाना का बोल है हमेशा हमेशा।

हमेशा तू मुझ में रहेगी। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में द फिल्म हमेशा, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सुनने वालों वेबसाइट होता है रेडियो वेस्ट में SBN.NL, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन की जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सक गए हैं, और उसी वेबसाइट की जरिए आप मेल कर सक गए हैं, और रेडियो वेस्ट में इसका ऐप पर भी आप ऐप कर सक गए हैं, और उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें भी होते हैं, मौसमी समाचार और आपका रोजाना का दाग हॉरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र भी। एक और काफी प्यार भरी गाना कुमार सानू और अलका जी की आवाज में आप सुनते ही रहना। ये दुआ है मेरी रब से, सुबह की प्रोग्राम है, कुछ सुनने वालों है जो मौत घर में इस वक्त ट्रैफिक में है, और अपना मौत घर में दया बे प्लस रेडियो की जरिए अच्छी क्वालिटी साउंड में हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं।

ये दुआ है मेरी रब से। असरो मीठे गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है। चलिए एक और खूबसूरत गाना की ओर। सुन पालू, आपको मालूम होना चाहिए कि 15 तारीख नवंबर उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट भी होने वाले है, और वो भी रोटरडम अहोईबे RTM स्टेज में। अपना टिकट के लिए iStripTickets.com वेबसाइट पर आप जाइए और जल्द से जल्द अपना टिकट आप खरीदिए। उदित नारायण एंड आदित्य नारायण लाइव इन कॉन्सर्ट सोमवार 15 नवंबर रोटरडम अहोईबे। फिल्म दिल है तुम्हारा अलका एंड

वेलकम रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और मुझे मालूम है कि आप भी सालों से रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। संगीत भरी स्टेशन, द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स, इसी रेडियो स्टेशन की सरिया हमेशा आपके लिए। कुमार सानू एंड अलीशा

सानू और अलीशा की आवाज में ये गाना बस पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। Het is inmiddels 8 minuten over 8:30. अभी तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी। अब की बार बाबू सुप्रियो एंड साधना सरगम होगा।

सुप्रियो एन साधना सरगम की आवाज में है काफी प्यार भरी गाना आज के ये सुबह की ये प्रोग्राम में बस भी इसकी गई स्टूडियो के अंदर तार आते रहते हैं, ऐप भी आते हैं, ढेर सा कॉम्प्लीमेंट्स भी आते हैं, सभी को शुक्रिया धन्यवाद। चले प्रोग्राम में कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना।

काफी दिनों के बाद ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में। चलिए गाना और प्रोग्राम में, उसके बाद खबरें होगा, खबरें के बाद पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी। अब की बार उदित नारायण एंड आओ का प्रोग्राम में एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म, फिल्म का नाम कसूर। 2001 में ये फिल्म जो रिलीज किया गया है, और गाना का बोल कितने बेचैन होके, सॉन्ग बाय उदित नारायण और अलका।

जहाँ जहाँ पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, आपको मालूम होना चाहिए रेडियो SBS का प्रोग्राम दुनिया के कोने कोने में इंटरनेट के सहारे अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए हमारा प्रोग्राम सुनाई देता है अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और हॉलैंड देश के बीच में नीदरलैंड में दूर दूर शहरों तक आसपास की शहरों में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में दूर दूर शहरों में और आसपास की शहरों में डीएबी प्लस रेडियो के जरिए प्रोग्राम भी पेश किया जा रहा है।

हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। चलिए यहाँ से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम की ओर हम आपको ले चलते हैं, पुरानी नगमे जो बहुत सी सुनने वालों पसंद करते हैं, और हर सुबह ये प्रोग्राम गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। तो चले सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ।

गीत की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना

क्विज की एडवांस में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए मुकेश जी की एडवांस में एक और खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

की एडवांस में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मुकेश के बाद मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप हर एक सुनने वालों को खबर किया जा रहा है हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं अपना हर एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। पद्मश्री मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

सजना, फिल्म का नाम मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी और लता की आवाज में एक और काफी खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम है आस पास, मोहम्मद रफी एंड लता प्रोग्राम में।

ट्रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। कुछ खूबसूरत नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

इस और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे आपके बार किशोर एन लता जी की ओर। गाना जो पेश किया जा रहा है एड फिल्म आ गले लग जा, फिल्म का नाम है आ गले लग जा। किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर प्रोग्राम में

रेडियो वेव्स पे इसकी सर ये किशोर एन लता जी की आवाज में ये काफी प्यार भरी गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना बस सबकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिर से होगा किशोर एन लता मंगेशकर और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम आराधना। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, एक रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम जो सालों से पेश किया जा रहा है और सालों से हजारों हजारों सुनने वालों बस रोजाना रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, जो हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से बस सालों से पेश किया जा रहा है और वो भी यूट्रेख्ट।

The Heart of the Millions, the Mighty Mookies की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

उसी फिल्म का ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है

रेडियो SBS के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पीस की गई। चले एक गाना बस किशोर कुमार और साथियों की आवाज में पेश किया जा रहा है, एड फिल्म जान बाज़।

या रेडियो SBS के जरिए हम तो फिल्म जान पास उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा और उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए गाना जो मोहम्मद रफी की आवाज में पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। जब जब फूल खिले फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये गाना अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का नाम।

रेडियो SBS के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो पेश किया जा रहा है सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

0: रेडियो SBS के जरिए सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं।
1: जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी

ये इल्जाम है। सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना तेरा काम है, मुजरिम तेरा नाम है, तुझ पे ये इल्जाम है। सीधे साधे भोले भाले लोगों

भर्ती है क्या? जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं कि छोड़ूं, तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या।

जो भूत होते हैं बातों से वो मानते वो नहीं, कुछ जानते वो नहीं, पहचानते वो नहीं। लातों के जो भूत होते हैं बातों से तो मानते वो नहीं। आ गई वो घड़ी बोल के पड़ी, आ मैं जरा तेरी बाहें मरोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या। बोल जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं कि छोड़ू, तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी।

0: कैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं कि छोड़ू, तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या। बोल जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं कि छोड़ू, तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या।
1: रेडियो SBS की जरिए गाना पेश की गई किशोर कुमार की आवाज में, जैसे को तैसा फिल्म का नाम। चले मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले किशोर एन लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाज में ये गाना पेश की गई जानवर और इंसान फिल्म का नाम गाना जो आज की इस प्रोग्राम में पेश हुआ है। गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में मुकेश और लता जी की आवाज में। चलिए प्रोग्राम में हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सानू और अलका जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों, आपकी फरमाइश से हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में, सभी काम काज किया जा रहा है। आप सभी का हर एक काम सस्ती दामों में बस किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टेलीफोन नंबर है 0322656566।

साधना सरगम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सितारों का सितारा रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं अभिजीत और खासतौर पर अलका जी की आवाज में। इंटरनेशनल खिलाड़ी फिल्म का नाम है।

पेश की गए अभिजीत और अलका जी की आवाज में खास गाना जो अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई फिल्म का नाम था इंटरनेशनल खिलाड़ी। उसी फिल्म का ये खूबसूरत गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चलिए आज के प्रोग्राम में जावेद अली और श्रेया जी के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है खूबसूरत नख में। आज की प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना।

गाना जो पेश की गए जावेद अली एंड श्रेया घोषाल की आवाज में, गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-22-66-66-11। इसी तार के नंबर पर बहुत सी सुनने वालों बस अपना अपना रिएक्शंस देते रहते हैं। मोहम्मद इरफान और साथियों की आवाज में ये गाना।

जाने भी दे गाना बस प्रोग्राम में सोनू निगम और सुनिधि चौहान के आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है जाने भी दे गाना जो प्रोग्राम में पेश हुआ है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl।

तक की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं शान और साथियों की आवाज में ये गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में शान और साथियों के आवास में प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। आज के प्रोग्राम में खूबसूरत नगमे बस पेश किया जा रहा है कुमार सानू एंड साधना सरगम, इश्क में जीना इश्क में मरना फिल्म का नाम।

श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में अभी आपने सुना। लाइव के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं।

रेडियो SBS की सरिये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आशा सिंह की आवाज में तेरे नैना। अभी आपने सुना गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अपनी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चल।

और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.com.au, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

सी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शेरू तरफ से रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में कुमार सानू जी की ओर एक गाना जो कुमार सानू के आवाज में पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में।

सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है रेडियो SBS का 030-265-65-60. उमर सानू के बाद उदित नारायण और साधना सरगम प्रोग्राम में होगा।

8 गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक से एक खूबसूरत गाने आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो वेस्ट में। इसके जरिए चले उदित नारायण एनाल का प्रोग्राम में हुगम।

फतेह अली खान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में कुमार सानू

खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल के साथ बेला सेंदे और साथियों की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। पहली फिल्म का नाम है

और रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई कुमार सानू और अलका जी की आवाज में आसराव बीट है। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की सर ये आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। चलिए गाना आज के प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक खूबसूरत सा गाना होगा जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में अरिजीत सिंह के आवाज में पेश किया जा रहा है।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का नाम होगा अभी बार अभी गीत और

अभिजीत और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में श्रिया और सोनू निगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी अब की बार प्रोग्राम में होगा और आपको हम ले चलते हैं एक और बड़ी ही खूबसूरत गाना की ओर। मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS के जरिए पुरानी नगमे बस पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। मन्ना डे और लता जी की आवाज में चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं, मस्ती भरा है शबाम।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई मन्ना डे और लता जी की आवाज में की मस्ती भरा है शबाम। मन्ना डे और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

मौसम है आशिकाना, लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था पकीसा, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहेंगे तो अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन पर जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर radio.sbs.nl और उसी वेबसाइट की जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं स्टूडियो की ओर। किशोर कुमार प्रोग्राम में होगा।

रेडियो SBS के जरिए किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नगमे रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है और पुरानी नगमे आप जरूर सुनते ही रहना। मुकेश और लता मंगेशकर प्रोग्राम में एक मंजिल राही दो फिर प्यार मिले।

प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अभी बार पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर।

ट्रॉफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। खूबसूरत पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश होगा किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में।

किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था अधिकार, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में मुकेश एंड लता प्रोग्राम में। मुकेश और लता जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम है संगम।

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं आशा जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है।

काफी पुरानी है, फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए द नाइटिंगेल ऑफिशिया आशा जी की आवाज में अभी आपने सुना ये खास गाना। एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश होगा मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

रेडियो SBS की सरिये मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। एक गाना मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुनो हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमा, दिस इज यू आर जे अंशली क्रमलाल, टू हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

सुन मेरे हम सफर, क्या तुझको इतनी सी भी है खबर इस खुशांदर अखिल सचदेव एंड कॉम आयो द फिल्म बद्री की दुल्हनिया। आयो द फिल्म मैंने दिल तुझको दिया, कम खुशांदर सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान, मैंने दिल तुझको दिया। इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS।

चुरा के दिल मेरा गुड़िया चली इस किस्म उधर बेनी दियाल अनमोल मलिक एंड अनु मलिक दे सकेर अत क्वाम आउट द फिल्म हंगामा 2. Gaan we dan verder met Hamesha Tere Saat Rehunga uit de film Krishna Cottage, gezongen door Kamal Khan.

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी इज आउट ऑफ द फिल्म हॉल गर्लफ्रेंड एंड इज सॉन्ग दो अरिजीत सिंह एंड शशा तिरुपटी. हाँ द फैदर मैथ जुबेन नोटियाल मैथ आउट ऑफ द फिल्म सनक. सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है.

आज रपट जाए तो हमें ना बुलाइयो इस द फिल्म नमक हलालन इस गुस्सा दौर किशोर कुमार एंड आशा भोसले। Uit de film Pagelpanti komt dan het volgende liedje via Radio SBS. Gezongen door Yo-Yo Honey Singh Kam Tumka.

हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा।

0: चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा। हुसामुद्दीन जगजीत सिंह एंड अलका याचनिक heeft u gehoord uit de film Terkieb. En uit de film Sare Sepne komt opnieuw gezongen door Alka Yachnik deze keer. Zara zara zi baate, teri mujhko yaad aati hai.
1: Haseen lamhe, shareer lamhe, sharmile lamhe, jhijakte lamhe, pighalte lamhe, dhadakte lamhe. मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं न हल्के होते हैं।

छोटे मियाँ लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड अदित्य नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑफ हेट पोडियम बिलीव एन अनवर्गेटलिके अवन फुल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्रachtige म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम टॉप निवो रुक जा ओ दिल दीवाने Zondag 15 november Zondag 15 november in Rotterdam Ahoy RTM Stage 2 generaties 1 podium een onvergetelijke avond mis deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com Raga Events proudly presents Baremia Chote Mia live in concert Udit

आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदे मेरे सारे सपने, ले चुन लो मुझको भी साथ अपने, तुम न मारो तो तुमको कसम, was uit de film Chori Chori en is gezongen door Elka Yachnik en Babu Supriyo. Gaan we dan verder met uit de film Chehre, Rang Darya.

जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, इसका सॉन्ग अदूर अमित मिश्रा एंड अभिजीत एंक्वाम द फिल्म जवाने जाने मन एंड द फिल्म अभिमान कॉम्थ सॉन्ग अदूर लता मंगेशकर तेरी बिंदिया रे।

गली गली में फिरता है. इस सॉन्ग दोराल का याचनिक एंड पप्पी लहरी एंड क्वाम आउट द फिल्म त्रिदेव एंड आउट द फिल्म हलियाली और रास्ता कॉम्ट बोल मेरे तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता.

0: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, क्वाम अद प्राथमिक फिल्म धड़कन फन अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी एंड सुनील शेट्टी। Dit liedje is gezongen door Nusrat Fateh Ali Khan. Gaan we verder met Tequila uit de film Bala.
1: Bala bhaiya ki subah ki khushi mein pesh hai Sony Band ki khaas peshkash. Suniye.

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले।

फिल्म यादें से आपने सुना उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज़ में जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले। और अब आप सुनिए 14 फेरे से है तू।

टाइटल सॉन्ग फिल्म दीवाने का आपने सुना कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म एहसास से। तुमसे मिलकर हुआ है एहसास एक नया नया।

आप हमारी जान बन गए। अज़ीज़ कौर और मिथुन की आवाज़ में आपने सुना खुदा हाफिज़ से। अब आप सुनिए कृष्णा कोतिश से। शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में आप सुनिए बिंदास आहा।

फिल्म अभिलाषा से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में वादिया मेरा दामन, और अब आप सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में फिल्म हम तुम पे मरते हैं से। ये एक फिल्म है उर्मिला मातोंडकर और गोविंदा का, और वो भी टाइटल सॉन्ग गाना है हम आप में कुछ हो गया, हम तुम पे मरते हैं।

हिंदू की जवानी है फिल्म का नाम और अभिनेत्री है कियारा अडवाणी। गाने के बोल हैं हीले टूट गए और गाने वाले हैं बादशाह और आस्था गिल। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है मुकेश दा की आवाज में। फिल्म छोटी बहन से आप सुनिए जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम, शेखर।
2: मेरे पास वक्त नहीं है बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
3: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

कसम से सनम प्यार तुमसे, करते थे करते हैं हम, उम्र भर करते रहेंगे। इस अर्ध फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं। दिल प्राप्त लीजिए इसको सहोदर कुमार सानू एंड अनुराधा पौडवाल। उत्पाद लीजिए इसको सहोदर अभय एंड श्रेया घोषाल। अर्ध फिल्म पानीपत कौमत सपना है सच है।

आप हमारी जान बन गए सुसमधुर मिथुन, विशाल मिश्रा एन अजीज कौर. दिस लीचे क्वाम आई द फिल्म खुदा हाफिज. यू लस्टर्ट नार एट प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS. Gezongen door Kishore Kumar en Manhar komt het volgende liedje uit de film Professor Pyarelal. Gaega Gaeja or Muskuraeja.

जीना भी क्या है जीना, तेरी बाहों में जीना. इसके साथ दोस्त सलमा आगा है बप्पी लहरी. En het volgende liedje in het programma Gietong Keleher is gezongen door Kamal Khan. Uit de film Ginny met Sunny komt Roeberoe.

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।